चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, इतलो सुंदर गायो छे रफी साहेबे खरु ने। मित्रों आपनो साथ हमारा कार्यक्रम माटे आटलो जरूरी छे, माटे जो आपनी कोई फरमाइश के टीका टिप्पणी होय तो आप आकाशवाणी ना पेज ऊपर आपनी टीका टिप्पणी के फरमाइश अमारा सुधी पहुंचाड़ी शको छो। मित्रों कार्यक्रम में साथ नी वात आवी छे तो बे लाइनो याद आवे छे, कोई के कहू छे तेम अजीब सी है बेताबी तेरे बिना, अजीब सी है बेताबी तेरे बिना, रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता। हाँ मित्रों, अने आवू थाय त्यारे ज एम थाय के आएगी आएगी आएगी याद आएगी। हाँ मित्रों आगळ प्रस्तुत छे फिल्म जाने मन्नू गीत 1976 नो, हेमा मालिनी अने देवानंद पर पिक्चराइज करेलू, अने अवाज छे लता मंगेशकर नो।